तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा तेरे रोने च रोआ।

मैं किन्ना तेनू चाया, तेरे विचों रब पाया, कासे जोगा नहीं ए रहा, मैं बड़ा मन समझाया, मंजिल सारे कर लेनी एक दिन आपां दोवां, मैं तेरे हासे आच हसां, तेरे रोने आच रोवां।

ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा, उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे कम आउणा चंगा। हक सच लई अड़ना सिखो न

घट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालों चुप ताएं अपनाउणा चंगा। बड्डियां दा

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में,

दिलिए खैर मना लैनी आगे सच के सिंह सरदार असी वाले अथरे हाँ साडियां मूड डिपेंड ने मत्ता असी वाले अथरे हाँ साडियां मूड डिपेंड ने मत्ता सदके मुड साडे दे आगे करके वेलियां सत्था सदके मुड साडे दे आगे करके वेलियां सत्था कन लाके सुन लैनी कन लाके सुन लै अजे हथ बन के तेनू दसा साडे खेत आबरू ने साडे खेत आबरू ने साडे खेत आबरू ने मिट्टी मां वर्गी साडे खेत आबरू ने मिट्टी मां वर्गी जिदे नाल सानू जन वध के प्यार दिलिए खैर मना लैनी आगे सच के सिंह सरदार दिलिए खैर मना लैनी आगे सच के सिंह सरदार।